भाई साहब भाई गुरदास जी के ये पावन पवित्र वचन भाई साहब भाई गुरदास जी विद्या मारकंड धन गुरु अर्जन साहब जी के समय जदों गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना हो रही थी गुरु अर्जन साहब जी महाराज बाणी लिखवा रहे सन ते भाई गुरदास जी बाणी लिख रहे सन लिखण वाले बाणी लिखवाण वाले गुरु अर्जन साहब जी लिखण वाले भाई गुरदास जी दास जो बचन पढ़न लगा भाई गुरदास जी की बाणी नूं घट गाया जाता

रसाली होर के ते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई ज्यो तिस भावै सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला।

आओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वडयाई।

अख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिल कै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना उह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारह ते कमजात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम, सतगुर सरणाई कर दया नाम प्रगास।

सिर सिर रिजिक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया। उडे उड आवे सह कोसा तिस पछ बचरे शरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करया। सब निदान

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाणा हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अन

जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप

हाथ दय मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू।

विभूषण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले पुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार।

राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज से ती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्द

सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा से

जिससे मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सत्संग जी बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई दिया है पहले अंकित कुरते अमरदास रामदास वसाए अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दया बैठा है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पार दर दत्या अंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु महाराज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते अठिया जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन चक्या दे चराई वाहि देख निढ कीता तेना प्यारे सत्यारे की कमाई दत्या अंतर के बोलो जी वाहे गुरु जिन्ना सिंघा सिंघिया धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लवाइया चरखियां चढ़े आरे नजर आए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसी तरीके सत्सा सिंह नवाया तो ना ही कमाई दाते अंदर की बोलो जी वाहेगुरु पंजा तख्त सतगुरुद्वारे दाते अंदर की बोलो जी वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है चित आवन का सदका सर्व सुख है जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देख देख की फतेह बृद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी से आए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु सिखानु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखां दा मन नी मा मत उच्चे मत पत के राखे आप वाहे गुरु गुरु की बनवाज पंजे सदस्य दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब तो होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आपके पंथ नु छोड़िया कहना प्रदर्शन दार दस मार दा अपने खालसा जी ने बख्शो हे न्योटिया दी ओट गुरु न्यासरिया ने आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार पिता जी दोहे कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आप जी दे चरण कामना अरदास ने दी गरीब नवाज आपने बख्शिश की आपके चरण गरीब पवित्र गवाणी सुखमणि साध संपूर्ण पाठ रार ऐस वेड़े संध्या समा जान के आपके चरण सोध अरदास साध पाठ की कृपा करो होइया भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी निभाणी सोध के सत्यम प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगत देवतानी की वार्ता करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी चार बल बुद्धि बख्शिश करो गरीब नवाज इस खुशी में आप ये बख्शियां दाता पितरकड़ाप शादी देगा तैयार करे हाजतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सार संगत रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखां क्लेशां रोगों का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देश प्रदेश रक्षा बख्शिश करो जी हे गुरु की विवादता जी आपके बख्शियां दातों जो लंगर चुट सेवे प्रमाणिक कर ली सरदार आपके चरणों सेवा कर रहे सारे ढैदियों सिंघा सिंघनियां तंदुरुस्ती बख्शो चाली करा बख्शो सदा इसे तरह अपने चरणा सेवा दी भावन बखरी पालता करो गरीब नवाज कृपा कर गुरु सच्चे पातशाह जी अज दर के सेवादार काका जगजीत सिंह के जन्मदिन की खुशी दतार जी परिवार वालों आप चरण धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं 200 डॉलर लैके आप चरण हाथ में प्रवान कर दतार बख्श कह दे काका जगजीत सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लम्मी आयु बख्शो अरे जाब बचे सच्चे पातशाह जी तरक्या बख्शने की वार्ता करनी जाब बचे चढ़ कला बख्शिश करो अरे सारे परिवार दतार पिता जी बाजिया परिवार तंदुरुस्ती सुख शांति चढ़ कला करो कमाइया सबल करो कार्य वाद्य बख्शने की वार्ता करो जी गुरु गरीब नवाज दर्द्या आप राजा रखो गरीब नवाज तार दियो काका रोनम चौपड़ा दे जन्मदिन की खुशी में अरे बच्चे की पढ़ाई की गरीब नवाज चढ़ कला वास्ते पढ़ाई की कामयाबी वास्ते बेनती कर रहे तार जी काज की पढ़ाई कामयाबी वास्ते बेनती करते हैं गरीब नवाज चौपड़ा परिवार वालों दतार पिता जी 100 डॉलर आप चरना पेटा के परिवार दतार बख्शिश कर दें काका रौनम चौपड़ा न तंदुरुस्ती बख्शो लम्मी आयु बख्शो उसी की नाम जाग दतार उच्ची विद्या जाल बनी पारदा करो बच्चे उच्ची विद्या जाल बख्शिश करो जी कृपा करो मेहर करो अमृत वेले तो लैके दरती आई साफ संगत हाजरी दर प्रवान करो कड़ियां खिलाओ तंगत दर के तिरफुल पेटा बनाने शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु जी महाराज कृपा करो खालसा पंथ सेवकों एकता दुआग प्यार की बख्शी करके सतन दास बख्शो चैनल जोड़ो जमाने का प्यार बख्शने की वार्ता करो जी गरीब महाराज हर मैदान जवान फतेह बख्शाने की वार्ता करो दता मेहरा ने कर आओ सेवा प्रवान करो दतार जी दूर दराज कार बैठिया डब कथा की सरण कर रही सारी संगत हाजरी प्रवान करो कड़ियां खिलाओ तारा में कृपा की संगत बख्शे
ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਦ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵਾਧੇ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਤਰ ਗੁਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਰੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਜਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

राय में हंसने की धुन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला दूजा, गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी हाथ, गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी हाथ। महला पहला, ना भीजै रागी नादी बेद, ना भीजै सुरती ज्ञानी जोग, ना भीजै सोगी कीतै रोज, ना भीजै रूपी माली रंग, ना भीजै तीर्थ भवै नंग, ना भीजै दाती कीतै पुन्न,

तुम ही नानक दास। बोलो जी, बोलो जी। एक ओवंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए किरंगत गुरते अमरदास। रामदासे हुई सहाय, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरया कर नौ निदावे ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत, गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देग चलाई तेग वहाई, देख के अंडित कीता तिना प्यारियां, सच्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलना जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल तन चिरवाए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, सिखी केसां सवासां संग निभाई, धर्म नहीं हारिया, तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका, सर्व सुख होए, जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रचिया रियायत, देख देख फते बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी साहे खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखानु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखां दा मन नीवा, मत उची, मत पतदा राखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीव, श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारा गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल, प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो, निमाणिया दे मां निताणिया दे तां, नियोटिया दी ओट, गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह, धन गुरु नानक साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, धन धन धन शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी, आप जी दे पाणी अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया है सतगुरु जी, शामा दे दीवाना विच सोदर रहरा साहब जी दा पाठ, आरती शब्द कीर्तन गुरमत विचारा अते शब्द कीर्तन होया है सच्चे पातशाह जी, संगतां घरां विच बैठ के आपो अपने घरां विच लाइव कीर्तन सुन के गुरु घर दीआं हाजरियां भर रहीआं हन, महाराज जी सब दी हाजरी प्रवान करनी, बेंत सेवावां गुरु घर वास्ते संगतां वलों आ रहीआं ने, महाराज जी सबना दे घरां विच सुख वरताए, सतगुरु सच्चे पातशाह जी बेंत संगतां आप जी दे सोहणे दरबार विच बैठ के हाजरियां भर रहीआं ने, दाता जी सब दी हाजरी दर प्रवान करो, गुरु गरीब निवाज समूह संगतां नूं गुरु घर नाल प्रेमा भगती बख्शिश करो, समूह खालसा पंथ नूं चढ़ती कला एकता दा दान बख्शिश करो, महाराज जी अमृत वेले तों इस वेले तक आप जी दी हजूरी विच विचरदे आं, बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने, आप जी बख्शण योग हो इस वेले जी की अरदास, आप जी दे चरण कमल पास महाराज जी पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करो, हुक्मनामे ते चलण दी समर्था श्री गुरमुख प्यारे मिलने जिन्हां मिले आप जी का नाम चेतावे, नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जी का वाहिगुरु जी की फतेह। तुदा गए अरदास हमारी जियो, कहो नानक सब तेरी कोई नाउ न जाने। बोलो जी, बोलना जी। अरदास एक ओहंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जय जय डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर कर नौने दा वै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु दाता गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दी अर्जी का ध्यान तरके। बोलो जी, निमाणिया दे मान निताणिया दे तान न्योटिया दी ओट तन तन तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द गुरु सचे पातशाह जी आप जी के चरणा कमलों में अरदास बेनती है। आप जी के भाणे अंदर चार पहर तीन सुखां दा बतीत होया अमृत वेले तो ऐस वेले तक आप जी ने तख्तों से प्रकाशवान होके खुले दर्शन दीदार बख्शे ने महाराज। रात के दीवाना की संपूर्णता आप जी की सेवा संभाल सोहला साहब जी की बाणी का पाठ आप जी के सेवकों पासों किया गया महाराज जी। बच्चों पासों बेअंत फुला हो जाए ने बख्शन योग हो सारिया संगत दिया तिल फुल भेटावान दर हाजरी प्रवान करो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुक्ते जो बोले इहां उहां सच होवे अपने कीर्तनिया दे सेवकां दे सारे कारज रास रैन सुखमई वतीत होवे। सेवादार हाजर ने आग्या बख्शिश करो निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान होवो अमृत वेले फिर दर्शन बख्शियो जी। सुख होवे नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा। अविनाशी जीयन को दाता, सिमरत सब मल खोई। गुण निदान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुरुदेव सतगुरु जी ने कृपा बख्शिश कीती है अमृत वेले पावन पवित्र तख्तां दे सुभायमान हो करके, प्रकाशमान हो करके दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन। नाल ही अज दे श्री मुखवाक रबी उपदेश आप जी ने सरवण कीते हन, जो सोरठ राग अंदर पंचम पातशाह धन गुरु अर्जुन देव दा तार पिता जी दी अमृत रसना तो उचारण शब्द सतगुरां दे पावन अंग 617 ते 18 उपर सुभायमान है। गुरुदेव जी ने हुक्म रूप विच बख्शिश कीता है, सतगुरु जी ने कृपा कीती है कि ओ अकाल पुरख वाहिगुरु ना नाश होण वाला सदीव रहण वाला अकाल पुरख अविनाशी प्रभु, जिसने सारे जीवां नूं जीवन दा दिता है, ऐ भाई उहदा सिमरन करके ही उहनूं आराध के ही जन्मां जन्मांतरां दी माड़े कर्म रूपां दी जो मैल है उह कट्टी जांदी है, दुरमत दा नाश वी उहदे सिमरन उहदी इबादत दे नाल ही हुंदा है। इस करके इह मेरे मना उस गुरु गोपाल नूं अपने हिरदे विच आराध, उस नूं अपने हिरदे तों जप ध्या, जिन्हां ने भी अपने हिरदे विच परमात्मा परमेश्वर दे नाम नूं परोया है, जिन्हां अपने जीवन दा आधार परमात्मा दा नाम बनाया है, ऐ वाहिगुरु मेरी अरदास मेरी बेनती है कि उन्हां गुरसिखां दी उन्हां गुरमुखां दी वड्डियां भागां नाल संगत प्राप्त हुंदी है, मैनू भी उन्हां दे चरणां दी धूड़ बना लै, मैं दास भी उन्हां प्रभु प्यारियां दे चरणां दी धूड़ तेरे पासों मंगदा हाँ जिन्हां दे हिरदे विच तेरा नाम है, क्योंकि उन्हां दी धूड़ गुरसिखां दी धूड़ दे नाल पापियां दी बुरियां लोकां दी भी गत हो जांदी है। इस करके रहमत कर अरदास है बेनती है मंग है कि सानू अपने प्यारियां दी गुरसिखां दी सेवकां दी चरण धूड़ दे दे। ये अरदास ये बेनती गुरु साहिब जी ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर कीती है, उपदेश दिता है। वाहिगुरु दा नाम सारे दुख कट्टन वाला है, प्रभु नू आराधन वालियां दी संगत ही सब तो उत्तम समा है उत्तम भाग है। गुरु कृपा करे सबना नू दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाचन। आओ प्यार सहित हुण अमृत बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ नाल जुड़िए। फुल्लां चुक्कां दी खिमा समूह संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मन जागे। प्रभु के सिमरन भव न व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख न संतापै, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निद, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध।

जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरै से धनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन परवान।

सिमरह सदा अभिनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे

रह चल्ला। जह मुश्किल हुवै अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जिह मार गेहु जाते केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याय, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कूट लखबाही, नाम जपत है पार पराही।

यह महाप्यान तप्त बहुकाम तय हर के नाम की तुम ऊपर छाम जा त्रिकामन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै।

कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का पर न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना। हर हर जन कै ऊट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं चपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग बड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कछ अवर न हुए, नानक गुरु।

ज्ञान सब ज्ञान घट शास्त्र सिमृत विज्ञान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरया अनेक प्रकार किए बहुत जतना पुण्य दान होम में बहुरतना शरीर कटाए होम में कर राती वर्त नेम करे बहुपाती नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास तपी सरथी वैगन माहे उमत प्राण कनिक सब है वर भूम दान न्यौली कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संजमत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे ताव पी होम में मैल न जावे हर के नाम संसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत घत पाही मन कामना तीर दे छुट्टे गर्भ गुमान मन ते हुट्टे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तंते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिखे अटरे जल तू वै बहु देह अनीत शुद्ध का हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत सयान जम का पौ व्यापै अनेक जतन कर तृष्ण ना त्रापै भेख अनेक अग्नि बुझै कूट उपाव दर कहनी सिजै छूट सनाही उपयाल मुह व्यापै माया जाल अवर कर तू सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिन नहीं मानै हर का नाम जप

मैं चूर है जे को जन मरण ते डरै साजना की सरनी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सासंग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सूगणीय सब ते उच्चा जाका मन हुए सगल कीरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पापुन नहीं लेपा निर्धन को धन तेरू।

प्रवराते। तुमरी उस्त तुम ते हुए, नान कवर न जान सकोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जब निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सासंग दुर्मत मल हिरिया। सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस रसन बखानी। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जी घट वसै हर नाम। श्लोक निर्गुण यार एनिया, सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू सासवार सिगारिया, गर्भ अग्न में जिने उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख पयाओ बैठ कौ दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तौ नानक सीजै। जे प्रसाद तारु पर सुख बस है, सुत प्रात मीत बनता संग हस है। जे प्रसाद पीव है शीतल जला, सुखदाई पवन पव का मुला। जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस पाव कर नित रसना, तिसे त्यागवर संग रचना। ऐसे

बीत। बलवा के गृह भीतर बसै, अंध के लमाया रंग रसै, दृढ़ कर मन मने प्रतीत, काल न आवै मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, आहू जुगत बिहानी कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, उचे ते उचा भगवंत। सगल समग्री तुम

आवे पत जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण विकोट गवावे एक भी ना दे दस पीहिर ले तो मूड़ा कहु कह करे। जे ठाकुर से नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया गंत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतैनद उलास। अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता प्रीत होवे बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्त से आज्ञा रख प्रभ की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया स्यों रंग लावे उबिन सहु मन पुछतावे।

आई मिथ्या तन धन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजुवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता मिथ्या त्रोमु अभिमानु मिथ्या पशु पर कर्त गुमानु अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या वास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देहे नानक हर हर नाम लय विरथी साकत की आर जा साच बिना कह हुवत सूचा।

गोविंद भजन बिन वृत्ते सब काम, ज्यो कृपन के निरारत दाम। धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाउ, नानक ताकै बल बल जाओ। रह तवर कछवर कमावत, मनि प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेख न काहू भीन। अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पानी तिन प्रभ जाता, नानक गुण जन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपह मानै। आपह आप आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव से आनत सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस पावै तिसले लड़ लाए, थान तनंतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी।

श्री वस्तुपदी जे प्रसाद शक्ति ही अमृत खाई तिस ठाकुर कौ रख मन मारी जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक।

ध्यावन योग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह तिसह त्याग कतवर लुभावह। जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पैरता का जस गावी जय। जे प्रसाद तु सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने। जे प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दर गह मान पावह। नानक पत छेती घर जावह। जे प्रसाद आरो कंचन देही लिवलाऊ तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत। जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरनी पार ठाकुर प्रभुता कह। जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देही नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभ कौ कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोय प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत सह त्याई। तिसह त्याई जो एक अलखै इहां उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान मनाट पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुनै करन नाद जे प्रसाद पेख विस्माद। जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है। सा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता।

तुहार गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए परगासु, प्रभु दया ते कमल विगासु, प्रभु सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मतूतम हुए। सर्व निदान प्रभु तेरी मया, आपू कछु न किन्हु लया।

साध जना की चर्च कथा अष्टपदी साध के संग मुखू जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटै अभिमान साध के संग प्रगटै सुज्ञान साध के संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग

सत्संग स्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, सत्संग नानक प्रभु सुप्रसन्न, सत्संग दुश्मन समीत, साधु के संग महापुनीत।

नानक साधक संग सफल जन्म। साधक संग नहीं कछ कालो, दर्शन भेटत होत निहालो। साधक संग कलुकत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नान कुदरै साध सुन रसै। साधक संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगै परम मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बख्यान है। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक

लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दुख जैसे सूर सर्व कौ सुख ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्य समान जैसे राज रंग कौ लागे तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरजेक ज्यो बसदा को खोद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पाव का सह सुभाओ

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की

का कथिया न जाय अदाखिर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त

नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर धारै जो अंतर नाम सर्व मैं पिखै भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पिख है नित्र साध की टैल संसंग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद भिख्या पर हर मन की वासना मन ते तरह इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानकोट मधे को ऐसा परस वैष्णु सो जी सुपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हुए नहीं कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध सुन पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नान कैसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्धै राम नाम आत्म मैं शुद्धै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नया वै बीज प्राण सिमरत बूझै मूल सो

पावै जन कोए कर कृपा अंतर उतारै पस प्रेत मुक्त पात्र कौतारै सर्वरो काउ कद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काउ जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गै प्रवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै सगल

स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताई साई जुगत नानको पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर रखे तैसा तिन्नाउ आपे करन करावण जोग प्रभाव है सोई पुन होग पसर आप अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्त करे अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रची बहुविधनिक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीशर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्या वह नान करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभेगात्म निकोर कई कोट पर दर्व को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट पर देश फरमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्धजति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्पो पाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नखियतर कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट की रतन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा सब ते निर सबूते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोजूनी फिरे कई कोट बैठत ही खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट कीर्तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभ कह हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संगतिन निबलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सुख प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जूत कीनो विस्तार कई बार पसर उपासार सदा सदा के कंकार कई कोट कीने बोपात प्रभते हुए प्रमा इस माता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन उवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सत ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन कौ साथ साथ सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल थल मही अलसो अष्ट बदी करण करावन करण जोग जो तिस भाव है सोई होग किन मैं थापु थापन हार अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देख अपनी वडियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभावै मानु गत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पत उधार है आप करे अपन विचार है दुहां सिरियां काप स्वामी खिलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुक ते क्या होया वै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत विख्या मैं रचै जे जानत अपना बचै पर में भूला दह दिसतावै निमक मैं चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले किन मैं नीच कीट कौराज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दा जिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीस ता का लेखा न गनै जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जी बै देख वडाई इसका बल ना ही सहाथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावै सोई पुनतियो
कबू ऊंच नीच मैं बसै, कबू सोग हर खरंग हसै, कबू निंद चिंत व्यवहार, कबू बकास बयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिला वनहार, कबू नृत्य करै भोपात, कबू होए रह दिन सोए रह दिन रात, कबू मां क्रोध विकराल, कबू सर्व की होत रवाल, कबू हुए बह बड़ राजा, कबू पेकारी नीच का साजा, कबू अपकीरत मैं आवै, कबू भला भला कहावै, ज्यों प्रभु राखै तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोन धारी लावै ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिर साधिक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त तंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप ज्यों सुहागी दिखावै, ज्यों प्रभु भावै तिवै नचावै, ज्यों तिस भावै सोई होए, नानक दूजा वर न कोए, कबहूं सा संगत उपावै, उस स्थान ते बौर न आवै, अंतर होए।

भोग। जो मंदर को थाम मैं थमन, त्यों गुर का शब्द मन अस्थमन। जो पाखा नाव चढ़त रह, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर। जो अंधकार दीपक प्रकाश, गुर दर्शन देख मन हुए विगास। जो माव ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु सांग मिल जोत प्रगटावे। जिन संतन की बांछो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर काहे बिललाई है, पूर्व लिखे का लिखिया पाई है। धूप सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चिता। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला कहे फिरे अजान। कौन बसताई तेरे संग, लपट रे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पद सिद्धि कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ताज मान लियो मन मूल, राम नाम हृदय में तो। लाद के संत संग चाल, अवर त्याग बिखिया जिंजाल। धन धन कह सब कोय, मुखु जल हर दर गह सोए। हो व्यापार बिरला व्यापार है, नानक ता कह सद बलिहार है। चरण साध के तोय तोय पियो, हर प्रसाद को अपना जियो। साध की धूर कर हो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये। अनिक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। ओट गही संत है दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवता धार। सर्व निदान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। सब किस तिसका

हरण भरण जाका नेत्र पूर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सद जाकै, सर्व थोक सुनी है करता कै। तुराज मै राज जोग मै जोगी, तप मह तपेसर गृहस्थ मह भोगी। त्याय त्याय भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मिथ नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता के जन्म के जाने पूत, सगल पुरोहि अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जनदास नाम त्या वैसे। त्यो गुण मैं जाको फरमाए, जन्म रह फिर आवै जाय। ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे रंग नाना।

0: तापे पाई। सब घट तल तिसके सब तिसके ठाऊ, जप जप जीवै नानक हर नाऊ। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिय सब भवन, नाम कै संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समानी, सत कर्म जा की रचना सत मूल, सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश, सत निरत बुझै जे कोय नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर सुकर न हार अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस भावे सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझिया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग राजन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, ओहि दाते दुख टनहार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद ज्ञान फल पावे, जुगाद सच सच नानको सी सच, अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यान हार, आप सत सत सब धारी, आपे गुण कारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत साजा सुनता, बूझण हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप जन मान्या, करम क्राम तिन मूल पछान्या, जा के हृदय विश्वास प्रवाया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, भय ते निरपो होए बसाना, जिस ते उजिया तिस माहे समाना, बस्त मैल बस्त गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई, बूझे बूझण हार बपीक, नारायण मिले नानकेक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, राव का सेवक नाम की रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जय दया प्रभ तारे, नानक सो सेवक सा सास मारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को देवड़ाई, अपने सेवक को नौज पाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि कतमित कोई न रखे, प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊचे ऊचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नान सो सेवक जय दृष्टाया, नीकी कीरी मैं कल राखे, भस्म करे लस्कर कोट लाके, जिसका सास न काढ़ते आप, ताको राख दे कर हाथ, मांड जतन
1: कर्तव पात तिसके कर्तव बिरते जात मारे राखे अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए काही सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रबल खोडानी बारू बार वार प्रभ जपिए पी अमृत ए मंत्र त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस कवर नहीं दिटाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने ऊठ बैठ सोवत नाम कहो नानक जल के सरकाम बोलो जस जीवा दिन रात प्रभुणे जन कीनी रात करे भगत आत्म कह चाए प्रभु अपने सो रहे समाए जो हुआ हो सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने जिसकी महिमा कौन बखानो जिसका गुण कहे एक न जानो आठ पैर प्रभ से हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सोजन सर्प तो का दाता तिसकी सरन सर्व सुख पावे तिसके दर्श सा पाप मिटावे अवर सियाण सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवण जानना होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सात पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग से उतरे नानक हर गुण गाओ अटपले सतगुर से की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल से की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर ना उचरे सतगुर सेके बंधन काटे गुर का सिख बेकार से हटे सतगुर सेको नाम तंदे गुर का सिख उड़भागी है सतगुर सेका हल्त पल्त सवारे नानक सतगुर सेको जी नाल समारे गुर के गए सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए ने कमी जिसको प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नान सो सेवक गुर की मतले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने

ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कि परम सहस्य अंत लया न जाइए नानक कैसा गुरबिण भागी पाइए सफल दर्शन पेख पनीत पर सचरण गांधर्मरीत पीठ संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर्गे गवे सुनकर बचन कर्ण अगहने मन संतोख आत्म प्रत्याने पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र अमर दृष्ट पेखे होय संत गुण बेअंत कीर्त ने पाए नान जिस पावे ते लै बुलाए जीबा एक उस्त तनेक सत पुरख पूर्ण बवेक काहू बोलना पौष्ट प्रणी अगमय गोचर प्रभु निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सद बलिहारी सतगुरु अपने नान जी प्रसाद ऐसा प्रभु जपने एहो हरस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरका नाही कले विनाश जहां के मन परगटे गुणता आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मुह माया कह संग न लेप मन में रखे हर हरेक अंधकार दीप प्रकाशे नानक परम दुखते तै नसे तौ तमाहे ठाण वरताई आंद पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिठे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेशे पहु चुका निरपो है बसे सगल व्याल मानते खैन से जिसका सा तिन कृपा तारी सास जप नाम रारी थित पाई चूके परम गवण सुन नानक हर हज सरवण निर्गुण आप सरगण पी होई कला तार जिन सगली मोई आपने चरित प्रभाव बनाई आपने कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रकाश साल के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी।

अनुसार अटपदी संजना मिल करो विचार एक सिमर नामदार अवर पाव समीत बसारो चरण कवण हृदमय और तारो कर्ण कारण सुप्रभ सुरत दृढ़ कर गहो नाम अरवत यो तन संचो हो भगवंत साजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक पिट जाए जे तन को चार कुंठड़ तावे सो तन हर सेवा ते पावे जे सो कुलित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सो बाको करे पढ़ी करनी सासो बापज हर की सरनी अनको पावे रोग न जाए रोग मिटे हर औखत लाए सर्व नान में हर नाम निदान जप नानक धरगे प्रवान मन प्रभु तो हर कह नाए दैद तावत आवटाए ताको बिगड़ लागे कोए जा कर दे बसे हर सोए काल ताती ठंडा अर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ पिण से पूर्ण होयास भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अवनसी कहो नानक काटी जंपसी तात विचार कहे जन सचा जन मरे सो काचो काचा आवागवन मिटे प्रभ सेव आप त्यार सरन गर्दे यो रत्न जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पाव न छूटन हारे सिमर साथ वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बचत नानक पल पाए सांग न चालस तेरे तना तू क्या लुटावे मूर्ख मना सुत मीत कटंबर बनता इंते कहो तुन कमल सुनाता राज रंग माया विस्तार इंते कहो कमल छिटकार आसती रथ सवारी झूठा डम झूठ पासारी जीन दिए तिस बुझे न बगाना ना विसार नानक पिताना गुर की मातो ले याने भगत बनावो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तमारो चीत चरण कवण राखो मन माहे जन्म जन्म के दिल विख जाहे आप जपो अवरा राम जपाओ सुंट कै रैत गत पाओ सार पूत सतर को नाओ सहज सपाए नान गुण गाओ तेरी उतर समैल भिण सजाए हौमे बिख पैल होए अचिंत बसे सुख नाल साख ग्रास हर नाम समाल छाड़ सियाण सगली मना सास
पावे सचना हर पूंजी सच करो बिहार ईहा सुख दर के जयकार सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मनाहे एक के गुण गौ अनंत मंत्र जा एक पवन एको एक एक आप पूर्ण पूर्ण प्रयो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक रात प्राच गए मंत्र अंतर एक प्रवरता स्वाद नानक एक जगता सलो फिर सुफिरत प्रभ आया पढ़िया तो सरनाई नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावूं सास सास प्रभ तुम्हें त्यावूं चरण कमल स्यों लागे प्रीत भक्त करूं प्रभ की नित नीति कोटि को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट मां सुख हुए हर रस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन त्रिपतानी पूर्ण पुरख नहीं डोलानी सुपार परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रकाश संदिन लिविलाग बिड़भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नु सदा निहाल बंधन काण मुक जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को फिर लाला कै सो क्यों बिसरै जे बिकते काटै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुर पूरै तथि है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याय साजन संत करो ए काम हां त्याग जपो अर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अर नाम जो पावो भगत पाए तरिया संसार बिन भगति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंथन अंतर ही सुहाव नेत्र उपेक दर सुख होए मन विकसै सात चरण धोए भगजन कै मंथन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुर कारण करताल भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सोहे पनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरे शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गाए अनिक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन भाई वो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बतनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत सासंग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रकाश लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आपु अपन किया नानक आपे ही फिर जा पष्ट बरी जब कार्यो कछना दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी आपुन सुन समाता बैर विरो के संकमा जब इसका वरण चिन्ह जब तब हर सुख किसे व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मोका के सोवत परम अपन केला वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक रगम पारू तब न

अष्टपदे पूरे गुरु का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेक साथ साथ सिमरहु गोविंद। मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या गुतरंग संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहु साथ संगन सागर तरहु। हर तन के पर लेहु पंडार नान गुरु पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहजानंद साथ संग पज परमानंद नरक निवार उदारु जियो। गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित हो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है धार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कलाल ए रतन सुनत कमावत हो तुधार। आप तरह लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग। जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहद वाजय। सुन सुन अनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभाप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साथ संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेवाल। जंजाल विकार तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी। प्रभ के उस्तद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सुहूत निदान। सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचा है सोच ना हो वही जे सोची लख वार चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख हो हे ता एक ना चले नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मे होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मे बख्शीस एक हुक्मे सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जानै निशान गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या वेखम विचार वी

कथना कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, देंदा देन लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंत्र खाही खाहे, हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे प्रवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाखिया पाओ अपार, आख है मंगा है देह देह, दात करे दातार, फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार, मोहौ के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मुख दुआर, नानक एवै जानिया सब आपे सचियार, थापिया न जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई, जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जे तिस पावा, विण पाणे के नाए करी, जेती सिरठ उपाई, वेखा विण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए, चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के, कीटा अंदर कीट कर दोसी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे, सुना है सद पीर सुरनाथ, सुना है धरत धवल आकाश, सुना है दीप लो पाताल, सुना है पोहे न सकै काल, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास, सुना है ईसर ब्रह्मा इंद, सुना है मुख साला हन मंद, सुना है जोग जुगत तन भेद, सुना है शास्त सिमरत वेद, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास, सुना है सत संतोख ज्ञान, सुना है आठ साठ का इसनान, सुना है पढ़ पढ़ पावे मान, सुना है लागे सहज ध्यान, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास, सुना है सारा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पात साह, सुना है अंधे पावै राहौ, सुना है हाथ होवै असगाहौ, नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै सुरत होवै मन बुद्ध, मनै सगल भवन की सुध, मनै मोहे चोटा ना खाए, मनै जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै मार्ग ठाक ना पाए, मनै पत सिउ परगट जाए, मनै मग न चलै पंथ, मनै धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाणै मन कोए, मनै पावै मुख दुआर, मनै परवारै साधार, मनै तरै तारी गुर सिख, मनै नानक पावै न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाणै मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान,
पंचै सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करै विचार करते कह करणै नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस ते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लेव लाए तार कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लेखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जेव फुर माए तेव तेव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देहे पानी धोतै उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वखत कवण कवण थित कवण वार कवण से रुती माह कवण जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सर ठीक साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपो जाणै अगै गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात
लिखा होए ता लिखी है, लिखा होए विनाश। नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। सलाही सलाही एती सुरत ना पाईया, नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिए। समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल तन। कीड़ी तोल ना होवनी, जेत समन होना भी सरह है। अंत न सिफती कहन ना अंत, अंत न करना देन ना अंत। अंत न वेखण सुनण ना अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाउ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ। ए वड ऊंचा होवे कोए, तैस ऊंचे को जाने सोए। जे वड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। किते मंगह जोद अपार, किते आ गणत नहीं विचार। किते खाप तुटै वेकार, किते लै लै मुकर पाहे। किते मूर्ख खाही खाहे, किते आ दुख भूख सद मार। ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाणे होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए। ओह जाने जेतिया मोहे खाए। आपे जाने आपे दे, आखै है से पे के ई के। जिसनो बख्से सिफत सलाह, नानक पात साही पात साहो। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिये अमुल भंडार। अमुल आवह अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीबाण, अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बखसीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करह वख्याण। आख है बरमे आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद। आख है ईसर आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे हे, ता आख न सको है के ई के। जे वड पावे ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। केते राग परिस्यो कहियन, केते गावण हारे। गावै तुहनो पौण पाणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे। गावह चित गुपत लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावह इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मश पयाले। गावन रतन उपाय तेरे, आठ साठ तीरथ नाले। गावह जोध महाबल सूरा, गावह खानी चारे। गावह खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे। से तुदनो गावह जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर, जिन सी माया जिन उपाई। कर कर वेखा कीता आपना, जिव ते सदी वड्याई। जो तिस भावै सोई कर सी, हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई।
मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की कर है बेभूत हिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता है जग जीत आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावह लेखे आवह पाग आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव ते सुभावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ऊना नदर ना आवै बहुता एहो विडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिर जनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तराहे पत पवड़िया चढ़िया होए कीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते भरमे घाट घड़ियै रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बिनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कह पिछै पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरे न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सची टकसाल
जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगे आईया बुरे आईया, वाचै धर्म हदूर। करमी आपो आपणी, के नेड़ै के दूर। जिने नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिने नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, छपै छंद त्व प्रसाद। चक्र चिहन अर बरन, जात अर पात, नहन जेह रूप रंग अर रेख। पेख को कह न सकत केह, अचल मूरत अनभव प्रकाश। अमित ओज केह जय, कोट इंद्र इंद्राण, साहो साहान गण जय। तेरे पवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बान तृण कहत। त्व सर्ब नाम कथय कवन, कर्म नाम बरनत सुमत। पुजंग प्रयात छंद, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अपेखे, नमस्तंग अलेखे, नमस्तंग अकाये, नमस्तंग अजाये, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग अनामे, नमस्तंग अठामे, नमस्तंग अकर्मंग, नमस्तंग अतर्मंग, नमस्तंग अनामंग, नमस्तंग अतहमंग, नमस्तंग अजीते, नमस्तंग अपीते, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग अडाहे, नमस्तंग अनीले, नमस्तंग अनादे, नमस्तंग अशेदे, नमस्तंग अगादे, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग उदारे, नमस्तंग अपारे, नमस्तंग सोएकाय, नमस्तंग अनेकाय, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अजूपे, नमस्तंग निर्कर्मे, नमस्तंग निर्परमे, नमस्तंग निर्देशे, नमस्तंग निर्पेशे, नमस्तंग निरनामे, नमस्तंग निरकामे, नमस्तंग निरताते, नमस्तंग निरकाते, नमस्तंग नरतूते, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अलोके, नमस्तंग अशोके, नमस्तंग नरतापे, नमस्तंग अथापे, नमस्तंग त्रमाने, नमस्तंग निधाने, नमस्तंग अगाहे, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग तिरवर्गे, नमस्तंग असर्गे, नमस्तंग प्रभोगे, नमस्तंग सजोगे, नमस्तंग अरंगे, नमस्तंग अपंगे, नमस्तंग अगम्य, नमस्तस्तरमे, नमस्तंग जलाशरे, नमस्तंग निराशरे, नमस्तंग अजाते, नमस्तंग अपाते, नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे, अदेसंग अदेसे, नमस्तंग अपेसे, नमस्तंग निर्तामे, नमस्तंग निर्वामे। नमो सर्व काले, नमो सर्व दयाले, नमो सर्व रूपे, नमो सर्व कूपे, नमो सर्व खापे, नमो सर्व थापे, नमो सर्व काले, नमो सर्व पाले, नमस्तस्त देव, नमस्तंग अपेव, नमस्तंग अजनमे, नमस्तंग सुबनमे। नमो सर्व गौने, नमो सर्व पौने, नमो सर्व रंगे, नमो सर्व पंगे, नमो काल काले, नमस्तस्त दयाले, नमस्तंग अबरने, नमस्तंग अमरने, नमस्तंग जरारंग, नमस्तंग कृतारंग, नमो सर्वतंदे, नमो सातो अबंदे, नमस्तंग नरसाके, नमस्तंग निर्बाके, नमस्तंग रहीमे, नमस्तंग करीमे, नमस्तंग अनंते, नमस्तंग महंते, नमस्तस्तरागे, नमस्तंग सुहागे, नमो सर्व सोखं, नमो सर्व पोखं, नमो सर्वकर्ता, नमो सर्वहर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्व दयाले, नमो सर्व पाले। चाचरी छंद त्व प्रसाद, अरूप है अनूप है, अजू है अपू है, अलेख है अपेख है, अनाम है अकाम है, अते है अपे है, अजीत है अपीत है, त्रिमान है निधान है, त्रिवर्ग है असर्ग है, अनिल है अनाद है, अजय है अजाद है, अजन्म है अवर्ण है, अपूत है अपर्ण है, अगंज है अपंज है, अचूज है अचंज है, अमीक है रवीक है, अतंध है अबंध है, निर्बूज है असूज है, अकाल है अजाल है, अलाह है अजा है, अनंत है महंत है, अलीक है निरसरीक है, निर्लंब है असंभ है, अगम है अजम है, अपूत है अशूत है, अलोक है अशोक है, अकर्म है अपर्म है, अजीत है अपीत है, अबा है अगा है, अमान है निधान है, अनेक है फिर एक है। भुजंग प्रयात छंद,
नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति बेबूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम मृदे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखिया परमे अपोघिया भुगते नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अपरेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इस्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तो निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा विरुद्धकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अगं ओघहर्ता परं परं परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्ता सतामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वगयानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शांत त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरुख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही आवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरुख उदार मूरत अजोन आद अशेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैले हो अनुराग नाम काम बेहीन बेखत ताम हूँ नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल आखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जानही जेहे बेद और कतेव रूप रंग ना जात पात सो जानही केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पुरतीन लोक चौदह के बिखाय जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थापे ओ सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व सवरचियो स्वयं भव गडन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकत दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार
सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जिहि रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत पाखत नेत कूट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनासु अजान बाहो शाहन शाहो राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चाचरी छंद तो प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वारती चतर चक्र पारती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी स आदिश अदृश्य अकृश्य भगवती छंद तो प्रसाद कथते के आशे ज देसै के अभिज पेसै के अगंज करमै के अपंज परमै के अभिज लोकै के अदित सोकै के अवतूत वरणै के बेपूत करणै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वरणै के सर्वा अपरणै के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूप के अनुपौ अनुपै के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिने के एक अधिने के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाप बेऐब है के गैबुल गैब है के अपुल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहिंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण्य के सर्वत्र पहुन्य के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फही में के आकुल अला में के साहिब कला में के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमें सुल सलाम है सलीखत मुदा में गनी मल से कस्ता है ग्रीबल परसता है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम रजुअल निधन है हरीफल अजीम रजाई के यकीन है अनेक उतरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिप्रगुं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अशेज है अशूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनंत है अलेख है अधिक है
अलेख हैं, अपेख हैं, अटा हैं, आगाह हैं, असंभ है, अगम्भ है, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंप्राणं सर्वंकर्मं सर्वंतर्मं सर्वंजुगता सर्वंमुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमातं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरी कहें अमे तो अमी कहें सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं। भगवती शांत तो प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सो सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी दहंद हैं के राजक रहंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमुल खेराज हैं ग्रीबुल निवाज हैं हरिफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिबो केरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है हमें सुलरवन है तमाम तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईश है समस्तुल अदीश है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जोरत जमाल है के अचलम प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आतम प्रभा है के अचलम अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार छंद त्व प्रसाद। मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंजो हर नर प्रपंजो अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनाश प्रेत तर तुरास आजान बाहो एक कैसा दाहो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आजिज ना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटट भंडार अनठट अपार अडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्व प्रसाद। करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है त्रित की तरण है जग की करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजपा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खालकायक है विश्वम्र है करुणालय है नृपनायक है सर्व पायक है पाव पंजन है अर गंजन है रेप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्मवास है जास के जास है पुजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग सात रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांत
अजय अलय अपय अभय अबु अजु अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढा अनाथे प्रमाथे अजुनि अमुनि नारागे नारंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुतर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सत्रं प्रणासे क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं भाव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं भाव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिदान के देख फिरे ओकार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप पली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे इते पहे तो कहा पहे भूपत अंत कौ नंगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम तान सो संजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाहा दुरंत दुबाह सो साज सुनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे यार अब चार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहेब सिरी सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद ने साचर पूत पवैख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जादिक दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नार श्रीपत के प्रस है पाग ते नार फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास पियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैठ बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो
काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं, काहू पशाक उसीस ने वायो, को भूतान को पूजत है पाश, को मृतान को पूजन तायो, कूर किरिया उर जियो सद ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो, कूर किरिया उर जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे उबाच बेनती, चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मुहे बचावहो, सुखी बसै मोरू परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संग्रियै, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम है शाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दै मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है, हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जु करे हाउ रक्षा, राख ले हो मोहे रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दा सुकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो, काटो काटो के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संत

अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपने बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह अह रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह हसवाय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस तुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख न तसै व्यापत कोई अड़ेल सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पणि जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधि अष्टमी रविवार तीरस्त द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहयो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाट कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दोता गावह हरी केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार उ करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समर्थ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साची साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब।

ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹਾਉ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟੁਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬੇਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜਹੋਂ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਏਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜਹੋਂ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਲਿਵਿਖ ਕਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈ ਦਹਿਨ ਦੇ ਸੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ। ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ, ਤਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਇਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੌੜੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣਾਏ। ਆਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਹੈ ਸਭ, ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਆਗਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰ ਸੁਣ ਆਇਆ। ਲਾਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਾਂ ਕੇਰੀ। ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਲੈ, ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਹੇ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵੈ ਚਲਾਵਹੇ। ਇਹੋ ਸੋਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ।
एहो तिन कै मन वसिया जिन तुर हों लिखिया आया एक फिरै कनेरे करह गल्ला गल्ली किने ना पाया कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विण सह जाय सहसा ना जाए नह जाए सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए सह सह जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोवो शब्द लागहो हर सिउ रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए जियो मैले बारहो निर्मल बारो निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिरै ज्यों बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सात गुरते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचै नाही मनसा सच समाणी जानम रतन जिने खटिया भले से वण जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले जे को सिख गुरु से ती सन मुख होवै ता सन मुख सिख कोई जियो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रह परण गुर बिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो हो सो सिख सन मुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछो बबेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवै विण सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो विण सतगुरु मुक्त ना पाए आवो हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो हो सच्ची बाणी बाणी ता गावह गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावह ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजा होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी कह नानक सतगुरु बाजा होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ शब्द से ती मन मिलिया सच लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव साकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस सिउ लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार न जाने ततै सार ना जानी गुरु बाजों ततै सार ना जानी तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुतिया रैण विहाणी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रैण विहाणी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनहों क्यों विसारी है ए वड़दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे उसनो क्यों पोहे न सकी जिसनो अपने लिव लावे अपने लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक ए वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है
जैसी अग्न उदर मैं तैसी बाहर माया, माया अग्न सब इको जेही करतै खेल रचाया। जात इस पाणा ता जम्मिया परवार भला पहाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाउ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसे विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिया विचों आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहा है हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन बन जा रहा, हर रास मेरी मन बन जा रहा, सतगुर तेरा सजानी। हर हर नित जपेओ जी ओहो लाह खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जा रहा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाई है सतगुरु मिलै जिसे आए। कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरेया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरेया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने हालिया। एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई। कहे नानक ए नेत्र आंद से सतगुर मिले देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो सच है सुनने नो पठाए, सच है सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी। सच अलख वेडाणी ताकि गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो सच है सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाउ नावनिद तिस दा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारै जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला सच है कर गावहो, गावहो ता सोहेला कर सच है जिथै सदा सच ते आवहे। सचो ते आवे जा तुद पावे गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है जिस बखसे सो जन पावहे। कहे नानक सच सोहेला सच है कर गावहे। आनंद सुनो वड भागी हो
सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पूजी होवे पास साहिब से ती हुक्म न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगा।

दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ।

बिन सतगुर भेटे सब फिरै अहंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजै बिनसै पत खोए, गुरमुख होवै बूझै सोए। महगो मोल भार अपार, अटल अछल

दर घर महली हर पत रखे। एहो मन राजा सूर संग्राम, एहो मन निर्भउ गुरमुख नाम। मारे पंच अपने वस किए, होमे ग्रास इकत थाए किए। गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुखेहु मन भक्ति जागे। अनहद सुन मान्या शब्द विचारी, आत्म चीन भय निरंकारी। एहु मन निर्मल दर घर सोई, गुरमुख भगत भाउ धुन होई। एहनिस हर जस गुर प्रसाद, घट घट सो

जोड़ के इसी तरह गुरबाणी कीर्तन गुरु साधियां शीसा प्राप्त करिए। सो सात संगत जी होइया भुलां गलतियां लिखिमा। सो अगला प्रम आप जी सतर साहब पासों सरवण करो जी। प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा।

प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अवनासी। सिमरन ते लागे जिनी आप दे आला, नानक जन के मंगै रवाला। प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु का सिमरन कारज पूरे, प्रभु का सिमरन कभू ना जूरे। प्रभु का सिमरन हर गुण बानी, प्रभु का सिमरन सहज समानी। प्रभु का सिमरन नीचल आसन, प्रभु का सिमरन कमल विगासन। प्रभु का सिमरन अनहर चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरा से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन सल नी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय। हर सिमरन बहे सिद्ध यति राते, हर सिमरन नीचे चौकुंड जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमरन हर कारण करना। हर सिमरन की ओ सगली आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा।

अनिक जोन चरमै अमर जाम नाम जपत पावे विश्राम। ओ मैला मलक बोरा धोवे हर का नाम कूट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईया साध के संग। जे मार के गने जाए ना कोसा हर का नाम हुआ संतोषा। जे पेड़ महा अंध गुब्बारा हर का नाम संग जियारा। जहां पंथ तेरा को ना सियानू हर का नाम ते नाल पछानू। जे महा बयान तब तुम काम ते हर के नाम की तुम प्रचाम। जहां त्रिखा मन तुझा करख ते नानक हर हर अमृत प्रख। भगत जना

दिन रात हर हर ओकर साध कमात। हर जन कह हर नाम निदान पार मुंजन की नो रान। मंतन रंग रते रंगी कह नानक जन कह ब्रत विवेकै। हर का नाम जन को मुकुट जुगत हर कह नाम जन को त्रिवत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब प्रैना भंग। हर का नाम जन की मड्डी आई हर कह नाम जन सो वापाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कतनाई वियोग। जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना हर तंजन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ऊर सुतानी हर प्रताप जनिया वरना जानी। ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते। आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं चपै। हर के भगत मुगत।

ज्ञान खट शास्त्र स्मृत ज्ञान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया चल त्याग बन बंदे प्रिया अनेक प्रकार किए वो जितना पुण्य दान हो मैं वो रत्ना शरीर कटाए हो मैं कर राते वर्त ने करा वो बाते नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जप एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर तिर दिवे माहुदात पिसरती वै अगन बाहे हो मन प्राण कनिका सब है पर गुमदान निवली कर्म करे भूवासन जैन मार्ग संयम अत साधन निमक निमक कर त्रि

जो दिशा सोचा लंहार लपट रहो तय अंध अंधार बटाव छो जो लावे नहीं ताक वातन आवे की मन हर के नाम की प्रीच बदाई कर कृपा नानका भले लाई मिथिया तम तन कुटम सभाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रत हस्तिया सुभस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे कस्ता मिथ्या द्रोह मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान आस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या सरवण पर निंदा सुनाय मिथ्या हर्ष पर द्रव को ही रह मिथ्या नेत्र पेगत पुत्र रूपाद मिथ्या रतना भोजन स्वार मिथ्या चरण पर विकार को दावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन्ने पर उपकारा मिथ्या बास रित विकारा बिन बुझे मिथ्या सभे सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी सागत की आर जा साच बना कहो वर सूचा दृता नाम बिना तन अंध मुखावतता कह दुर्गंध बिन सिमरन तिन रैन बिरता बिहाय भेक बिना जो की ती जाए गोबिन भजन बिन बिरते सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जय गढ़वसु हर नाव नार ताका बल बल जाव रहत अवर काचे अवर कमावत मने प्रीत मंडो गन लावत जानुन हार प्रभु परवीन बाहर भेक न काहू दीन और उपदेश आपना करे आवत जावत जन मैं मराय जिसके अंतर बसाय निरंकार तिचकी जी की तरह संसार जो तुम बानी तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जा रहे अपना किया आप है मार आप है आप कर तिन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव श्यान सकल तेरा सबके जा रहे आत्म की रात जिस भावे चले दड़ लाए थान तनंतरे हास माए सोचे वक्त जिस कृपा करी निमख निमख जप नारक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनिस जाय अंगेव नान प्रवचन नागते कर प्रसाद गुरुदेव परि जेहे प्रसाद सति अमृत खाहि तिस ठाकुर को रख मन बाहि जे प्रसाद सुखद मुक्तन लावे तिस को स्मृत प्रमुखित पावे जे प्रसाद विषय सुख मंदर तिसे धियाए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख वसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा धियाई धिया मन जोग जे प्रसाद पाठ पट मुर हंडावे तिसे त्याग कत औलु पावे जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैरता का जस गा बीजय जे प्रसाद तुझ सबको मारे मुक्ता को जस रतन बखार जे प्रसाद तेरु रहता ध्रम मन सदा तिहाई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगे मान पावे नान प्रसे ती कर जावे जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लाव हो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उलार मन तू पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिद्र ढाके

ब्रह्म ज्ञानी कह नाही संदा, ब्रह्म ज्ञानी ले दावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो चोपला, ब्रह्म ज्ञानी चुपल बला, ब्रह्म ज्ञानी संग चकल उदार, नानी ब्रह्म ज्ञानी जपै चकल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह पिता।

ब्रह्मज्ञानी का निर्मलमंतु ब्रह्मज्ञानी जिसक्रय प्रव्याप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दृश्य बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्मज्ञानी को खोजय में सर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी के मत नाहि ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहि ब्रह्मज्ञानी का कौन जाना भेद

ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू निर करै वो पात कबू सोय रह दिन रात कबू हो महा क्रोध विकराल कबू सृप की हो त्रवाल कबू हो वहवड़ राजा को बेखर नीच का साजा कबू अपकृत मा में कब हूँ पला पला का जो प्रभु रखे तिवी रहे गुरु प्रसाद नानक सच कह कब हो पंडित करे व्यान कब हूँ मौन धारी लाए ध्यान कब हूँ तट तीर्थ स्नान कब सिर साधिक मुख ज्ञान कब हूँ कीट हस्त पतंग होए जिया अनिक जोन प्रमय प्रमिया नाना रूप जो स्वागी दिखा जो प्रभाव तिवन चाह जो तिस पाव सोई हो नानक दूजा न कोई कब हूँ साध संगत एह पावे उस स्थान ते बहुर नावे अंतर हो ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मत नामृत एक रंग सदा सह पार ब्रह्म कह संग जो जल में जलाए कटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट

जिसका अंतराजमान स्वर्ण पाति हो स्वां जो जाने में जीवन स्रोत विष्टा का जन आप उसको क्रमंत कावे जन्म रे बहु जोन प्रमावे तन पुम का जो कर गुमान सो मूर्खन दहा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी सब नान के हम कावे सुख पावे तनमता ही कारो गर्भावे तृण समान के सन्ना जा बोलस क्रमान को प्रक्रिया फल की त्रता का विनाश सावते आप जाने बलवंत खिन में हो जाए पसमंत किस नाम दया अहंकारी धर्मराय तिस्करी खुआरी गुर प्रसाद कविट मान सो जनानक दुर्ग है प्रवान कोट क्रम क्रह हो तारे श्रम पाव सगले बिथारी अनिक तपस्या करी अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनिक जतन करा तुमने द्रव्य हर दुर्गे को कैसे गवे आप उसको जो पुलाह का तिसे पुलाह निकट ना आवे सर्व की कवन होई को नानक ताकि निर्मल सोई जब लग जाने मुझ ते कछ होई तब इसको सुखनाई कोई जब ये जाने मैं किस करता तब लग रव जोन में फिरता

प्रिय अमृत मंत्र प्रियाय नाम रतंजलि गुरुमुख पाया तिस्क चरण दिष्टाया नाम तन्ना मोरूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंत्रना में नाम समाने उठत बैठे सोत नाम कहो नानक जन कै सतकाम बोलो जजे बाध नाथ प्रभु अपने जन की निदात करह भगत आत्म कह चाहे प्रभु ने सो रह समाये जो आओ सो जान प्रभु अपने का हुक्म बचान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभु सह जूरे कौन आने से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जिन अपना प्रभु चाहता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पा मिटावे और स्यानव सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिजन कह पूजो सत पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाव तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अश्वदी सतगुर सिख की करह प्रतपाल सेवको गुरु सदा दयाल सिखी गुरु दुरमत मल ही रह गुरु बचने नाम उचरै सतगुर सिखे बंधन काट है गुरु का सिख विकार ते हट है सतगुर सिखो नाम धंदे गुरु का सिख उठभागी है सतगुर सिखा हालत पलत सवार है नानक सतगुरु सिखो जी नाल समार है गुरु की ग्रह सेवक जो रह है गुरु की आज्ञा मन में सह है आपस को कर कछ न जनावे हर नाम हृदय सत्य आवे मन बेचे सतगुर के पास सेवक कह कारज रात सेवा कर तो इन्हें कामी जिसको प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जी साफ करे नानो सो सेवक गुरु की मतले बेस विश्व गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ निगवार गुरु को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंगराता ब्रह्म जंजन में पार ब्रह्म एक अपना एक भरम सह सणप लया न जाइये नानक ऐसा गुरुड़ भागी पाई है सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरणगत निर्मल रीत पेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर कह गवे सुनकर बचन करन अगाने मन संतोख आत्म पत्याने पूरा गुरु रखियो जा काम मंत्र अमृत विश्व कवे संत गुण बेहद कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए जे वाहे गुरु सतन एक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पोचत प्राणी अगम उचर प्रभु निर्बानी निरहार निर्वय सुदाई ताकि कीमत किन न पाई अनेक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरह सदबल हारी सतगुरु अपने नान जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने यो रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाय कदे बिना जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पैर का नाम ले सच उपदे सेवको दे मोह माया कह संग न ले मन में राखे हर हर एक अंधकार दीप प्रगासे नारे ब्रह्मो दुख तय तेनासे तब तुम्हारे ठाण वर्ताए रंग व्या दुख नाटे भाई जन्म रण के मिटे अंधे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुँ चुका निरपो हो बसे सकल भी आदमंत्रे खै नसे जिसका साधिन कृपा धारी सासन जब नाम मुरारी चित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलातार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतरे को सोए ओत ओत रविया रूप रंग भय प्रकाश साध का संग रच रचना अपनी कलतारे निकबार नानक बलहारी सलोक साथ न चाल बिन भजन बिखिया सगली छार हर हर नाम कमावना नानक हो धन सार अश्वदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार और उपाओ समेत विसारो चरण कमृत में उतारो कर्ण कान सोबरो समृद्ध कर गहो नाम हर वत हे तन संचो हो भगवन संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माए सारा रोग नानक मिट जाए जे धन को चार कुटावे सो धन सेवा थे पावे जिस सुख को नित बात चैमी सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करणी सा शोभा भजर की सरणी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटाए रख खतराए सर्व निदान में हर नाम निदान जब नानंदर गह प्रवान मन पर बोधो हर कहना दय दिताओत आवे ठाए ताको विघन लागे कोय जा कर दे बसैर सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ बहु विनचय पूर्ण हुए आस भगत भाए आत्म प्रकाश चित कर जाय बसैब नासिको नानक काटी जम फांसी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सुखा चोका चा आवा गावन मिटै प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव ये रुतन जन्म का हो उधार हर हर सिमर प्राण आधार
अनेक उपाव ने छूटनहारे सिमर शास्त्र वेद विचारे हर की बहुत करो मन लाए मन मच्छत राम फल पाए संगना चाला तेरे तन हाथों क्या लपटाए मूर्ख मना सोच मीत कुटमर बनता इनते को तुम कौन सना था राज रंगमाया विस्तार इनते को कौन छुटकार हस अस्थि रत सवारी झूठा डम झूठ पसारी जिन दिए तिस विजय न बिगाना नाम सार नानक पस्ताना गुर की मत्ते लुए याने भगत बिना बोडू बेस्याने हर की भक्त करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के किल विख जाए आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार पूत सदर को ना सह सुबह नान गुण गाओ तेरी उत्तर समैल बिना जाय हो मैं भी पैल ओहो अचिंत बसे सुखनाल साध ग्रास नाम संभाल छाड़ सनम सगली मनाल साध संग पावे सजतना हर पुंजी संच करो व्यवहारियां सुंदर कह जयकार सरम निरंतर एको देख ओ नानक जाके मस्तगले एको जप एको साल आए एक सिमर एको मन आए एकस के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर्ण रहे प्रव्याप अनेक विस्तार एक थे एक राज प्राचत गए मान

अष्टपति जातक जनजाति प्रवधान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो धूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सास मृत में त्याओ चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मंगे नाम प्रसार प्रभु की दृश्य महासुख होए हरस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूरण पुरुष डोला ने सोवर परे प्रेम रस रंग उपजय चाव साध के संग परे शरण आन सत्याग अंतर प्रगा संध निवलाग बड़ भागी जपया पर सोए नानक नाम रते सुखोए सेवक की मनसा पूरी वही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच मुन्नी सरदा सब पूरी रव रह सत्संग जूरी जिसका साथिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों विसरै जे काल न भान है सो क्यों विसरै जे की आ जान है सो क्यों विसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों विसरै जे जीवन जिया सो क्यों विसरै जे अग्न मै राख है गुरु प्रसाद को बिरला राख है सो क्यों विसरै जे विकते काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गुरपुर है तत ए बुझाया प्रभु अपना नान जन त्याया सा जन

जब पाओ भगत पाए त्रिय संसार मेरे भक्ति तन हो सीचार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़ा जात पाए विश्राम सकल दुख का होत नाश नान नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन तरे सुहाओ नेत्रोपेक दरस गोहे मन विषय सात चरण दोहे भगत जनाके मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दी जय कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रह सर्व समाये प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल अनाथ अनाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरखान करतार भगत जना के प्राण धार जो जो जपै सोए पुनीत भगत पाए लावे मन हित हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरे शरण पुरख भगवान सरा बैकुंठ मुकत मोक पाए एक निम हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई भव भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत परिस करणी शोभा तनमंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत साध संप्रभ देह निवास सर्व सुख नानक प्रकाश।

यही फिर जाप अष्टपदी जब आकार एक न दृष्टेता पाप उन्दव कहते होता जब धारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध की संकमाद जब इसका वरण चिन्ह न जापत तब हर शोक को किसे भी आपत जब आपन आप पार भरम तब मोह का किसोत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नान करण हार न दूजा जब होवत ब्रह्म केवल तनी तब अंधमकत को किसको गनी जब एक अहरा गम पार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रसाद सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ढाए जब आप अपनी जो तर है तब कौन निडर कौन कदर डर है आपन चरित आप करने आहार नारंग ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख आपने आसन तह जन्म मरण को का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रवेक का तब चेत्र गुप्त की पूछत लेखा जब नाथ निर्जन अगोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ये चर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन महल को क्या होता जय निरंजन निरंकार निर्माण तय कौन को मान कौन अवमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल चित्र लगत को कीस जय ज्योत स्वरूपी जो संग समाव है तय किसे भू कौन तृताव है करण करावन करण हार नान करते का नहीं सुमार जो अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्वकला पै प्रवीन तय वेद कतेव कहाँ को चीन जब अपने आप आप उधार है तो सगन अब सगन कहाँ विचार है जय अपन ऊंच अपन ने आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कोई है चेरा विषमन विषम रहे विषमाद नानक अपनी गजान आप जय छल अछेद भेद समाया वहाँ किसे व्याप्त माया पस को आप देते गुण का ना ही प्रवेश जय एक है एक एक भगवंता तय कौन चिंतित लागे चिंता जय अपन आप तियारा तय कौन को तय कौन सुन हारा बहु भय तू उसते ऊंचा नानक आपस को आप पहुंचा जय आप रचियो प्रपंच आकार ते गुण में कीनो विस्तार पाप पुण्य तय पही कहावत कौ नरक को सुरक वंछावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम व्यापार दुख सुख मार अपमान अनेक प्रकार के उपख्यान आपन खेल आप कर देखा खेल संकोच है तो नानक एक है जय भगत भगत तय आप जय बसरे पासा संत प्रताप नौ पाका पैधनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप को तक करे अनंचो जा पैरस भोग निर्जोग जिस भाव है जिस आपन नाय लावे जिस भाव है तिस खेल खिलावे बेशमार था अगंत अतुल जो बुलावो तो नानक दास बोले।

माया सब कह मद लिप्त रह है। जो किस कहना सो आपे कह आज्ञा आज्ञा जाय नान जा भावे तरह समाय। इसते हो सो नाही बुरा उरे कहो कि नह कच करा। आप भला कर दूत अतनी की आपे जाने अपने जी की। आप साथ धारी सब साच ओत पोत आपन संग राच। ताकि कसमत कहीं न जाए दूसर होए तो सोझी पाए। तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक हो जान। जो जाने ते सदा सुख होए आ मिलाए लहे प्रभु सोए। ओ धनवंत कुलवंत पदवंत जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जनावन काय स्वाव जन का संचित आवे ना हो। आप मुकत मुकत करे संसार नानक तेजन को सदा।

के गुण गाओ अश्वदी पूरे गुर का सुनोपदेश पार ब्रह्म कर कर पेख सास सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतर चिंत आसनित्यागो तरंग संजना की तुरमन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के परले भंडार नानक गुरुपुरी नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संपज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुर्भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ये आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कमात हो तुदार आप तरह लो कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संज्ञा कमल ला गह रंग जय जय शब्द नाहत वा जय सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महत कह माथे नानक उदय तिन के साथे शरण जो सुन शरण ही आए कर कृपा प्रवाह मिलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण हुए सेवकी से आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन हसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक ने भी खे बमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावतान एकागर चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिसमन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रकट सबल होए सब थे ऊंच पाए स्थान बौर न हो वह आवन जान हर दन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या तप जोग प्रतिहान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब कहमत सकल थे उदास सुंदर चतुर तत् काव्यता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ता की गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सकल मता

सुखमनि सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।